0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिसने तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: किसी ने भी अगर कार, वैन, एसयूवी लेना, टॉप टॉप टॉप दा नाम इक्को है, वो है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला अते करण शर्मा नूं कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार, वैन, एसयूवी कोई भी लेना होवे, एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 ते कॉल करो। Video 1980 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੋਰ ਰੋਡ ਐਂਡ ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ IPTV ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 4K IPTV ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ

0: Mohan. Contact us at richmohan.com.
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है।

क्या बात है, किवें हो यार? बल्ले बल्ले है, ठीक ठाक एंजॉय कर रहे हो? खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, बड़ा मिठा जहा मौसम है, तो एक बार फिर एक सोहना दिन, बड़ी सोहनी शाम एंजॉय करने लिए आप पहुंच चुके हैं, तो इकट्ठे रौनक मेला सजाने हैं, तो स्टूडियो का नंबर थोड़ा याद है, दसन की लड़ है, आई डोंट नो। चलो कुछ होंगे मित्र सज्जन साढ़े नवे जड़े केंद्र भाजी, असं सारों का पता ही नहीं भी थोड़ा रेडियो आता, इस तब कह लो कि पहली बार सुन रहे, बड़ा आनंद आ रहा। सो रेडियो प्रोग्राम पंजाबी दाना पिछले तुम तकरीबन ऑलमोस्ट 35 साल तो इंजॉय कर रहे हो, तो उम्मीद है कि तुम जिन्ना असी ना प्रोग्राम पेश करने वेले इंजॉय करते हैं, असी होप करते हैं कि उस तो कि वध तुम सुन के इंजॉय करते हो, क्योंकि देखो जिहड़ा सुनने वाला ना वो ता ही इंजॉय करेगा जे पेश करने वाला बंदा खूब इंजॉय कर रहा। हुण तुसी फॉर एग्जाम्पल लै लो, जे कोई बंदा खड़ा ला रहा, कोई कॉन्सर्ट ते परफॉर्म कर रहा, जिहनूं

0: मॉर्गेज दी बनी कोई गल?
1: होए शम्मी पठल होरानल हो गई गल। कार लेके देन तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल।
2: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट लई याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम शम्मी पठल। तुहाडीआं लोड़ां मुताबक वधिया लोकेशन ते बेस्ट प्राइस ते घर आसानी नाल लेके दिंदे ने। रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल, अज ही कॉल करो 416 917 7763 416 9

0: नादित होसी भी सस बोले सोने हाल सत श्री अकाल।
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
2: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले। याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763 Life insurance, visitor insurance, super visa insurance, critical illness, disability insurance, RESP, travel insurance, convert expensive mortgage insurance to term insurance.

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32, 55, 80.
2: 98.
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
2: वो काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने।
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे। हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते। 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828 905-450
4: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है। 3 bedroom 2.5 वॉशरूम हन। हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है। $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है। 2 साल दी नवी कॉटेज $1,00,000 दी इनकम जनरेट कर दी है। 12x30 फुट दा डेक है, प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है। मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है। पीछे पानी है अते खूबसूरत है। क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा। बीच भी नजदीक है। जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222 बाय बाय 265 बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टांडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशा वादी उम्मीद कर दें कि तो अज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरों नाल जोड़ के रखिए। तियां दे मेले की जिहड़ी जानकारी आ ओह हुण तो लैके 2 बजे तक तुहानूं दित्ती जाएगी। तियां दे मेले की हो रहा नहीं हो रहा और इस दे नाल नाल सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजिर है। अज सूरज सिंह 5:37 ते आया, 8:55 ते चले जाना। मामा चंद सिंह 12:31 ते अज सवेरे आया ते रात नूं 10:09 ते चले जाना। अज दा तापमान 31 डिग्री तक रहेगा, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड। कल नूं सारा दिन बदलवाई दे नाल छतरी छतां दी लोड़ पेगी। तापमान 25 डिग्री, थंडरस्टॉर्म झखड़ झोले आउणगे। संडे नूं मोस्टली सूरज चमकदा रहेगा, तापमान 27 डिग्री। मंडे नूं सूरज चमकेगा 26 डिग्री। ट्यूजडे नूं सूरज चमकेगा 28 डिग्री। बुधवार नूं झखड़ झोलियां दे नाल बारिश पैण दे आसार नजर आउंदे, तापमान 26 डिग्री। स्पोर्ट्स खेत्र च रात ब्लूजे आलिया ने अटलांटा ब्रेव नूं 7-2 दे फर्क नाल हराया। उधर स्टैनली कप का फाइनल चल रहा है हरकेन अते गोल्डन नाइट्स दा। जे हरकेन जित रहा तां वी खुशी आ, क्यों एंडरसन जिहड़ा गोली आ उहनां दा उह टोरंटो मेपल लीफ दा गोली हुंदा सी। जे गोल्डन नाइट जितया तां वी ठीक आ, उह मैडनर अपना हुंदा ते वधिया प्लेयर उह उहनां कोले चलिया गया। 4-3 दे फर्क नाल हरकेन जिते, इस तरह जिहड़ा सीरीज है 1-1 नाल टाई है। पाकिस्तान दे विच 2 बंदियां नूं डैथ पेनल्टी मिली है, सजाए मौत मिली है। उन्हां ने एक लेडी सीगी जिहड़ी कि फ्रेंच दी सी, फ्रेंच वूमेन, उहदा रेप कीता उहदे बच्चों के सामने। हाउ बैड यू कैन गो मैन, दैट्स क्रेजी। अपने इत्थे वकील दीपक प्रभाकर जिहड़ा रायन वैडिंग दा वकील सी, रायन वैडिंग नूं उहने सलाह दित्ती सी, कहिंदा फलाना बंदा हैगा अपना तेरा गवाह, ते इहनूं चक दे फिर तेरा केस ठीक होजू। खैर उहनूं सद्या जा रहा है अमेरिका च लैके जाना है एक्सट्राडाइट करके। कदों लैके जांदे जे पता नहीं, बाहर फ्री तुरिया फिरदा। इत्थे गए और आए
1: 40 साल हो गए अपने व्याह नूं, फिर किथे सेलिब्रेट करन दा इरादा है?
2: मेरी मन्नो आपां पिंड ना चलिए।
1: धर्म नाल आ तां तूं मेरे मन दी गल ही कहती है, पर इन्नी छेती टिकटां कित्थों मिलणगियां?
2: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल तो अपने साथ वर्गे ही साथ है उन्हां दा, अपने क्लाइंट्स दे नाल पिछले 40 सालां तो।
1: 40 सालां तो बेदाग सर्विस
3: गिल इंटरनेशनल ट्रैवल।
2: क्वालिटी सर्विस, वधिया रेट्स ते बेस्ट डीलिंग है उन्हां दी पहचान। इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया दे किसे भी कोने च करना होए ट्रैवल,
3: सर्विंग कैनेडा नेशन वाइड।
2: 9056718400 or 9057968800 or visit giltravels.ca।
4: देखो जी, एक ते मच्छी हुंदी है जिहड़ी पानी च रहिंदी, ते दूसरी मच्छी हुंदी है जिहनूं वेख के मुंह च पानी आ जांदा है। इंडियन स्वीट मास्टर तो मिलदी है, आज ही चख लो।
2: कॉर्नर ऑफ मैकलॉगलन एंड रे लॉसन, कॉल 9054502800। नाउ ओपन टिल 2 AM।
5: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, because we care.
6: Are you ready?
0: टिक्का जंक्शन ले 6474294040। केटरिंग करानी है छोटी बड़े फंक्शन ले, नो प्रॉब्लम, 6474294040। लाइव कुकिंग करानी है करे, नो प्रॉब्लम, 6474294040। तुसी इन्हां दे बैंकुएट हॉल या लॉज में छोटी बड़ी पार्टी करनी है, नो प्रॉब्लम, 6474294040, 647-429-4040।
7: हर महीने मैकेनिक नु पैसे दे दंदे हो, ट्रक खरीदे आया मैकेनिक नु गोद ले लिया।
8: ओ मैं की करा, ए पुराना ट्रक ता रोज नखरे करदा है।
7: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्को ट्रक सेल्स ते।
9: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक बेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
7: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
9: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चलते हैं निस्को ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक, 7055 टोरब्रम रोड, मिसीसागा। कॉल 6745589999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुन मैं की करा।
10: रब जी, मेरा बिजनेस नहीं है चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
11: ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਵ ਤਾਤਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਡ ਚਲਾ। ਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫੋਨ ਕਰ 416-677-0609 416-677-0609।

0: Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजर्बेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही Call करो, 416-456-6
2: कनेडा
3: विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दे लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
3: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है ता तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
6: तुसी अपनी इंश्योरेंस बहुत ज्यादा पे करदे हो वरी ना एक नाम असीं तुहानूं दसदे हां मैनूं शर्म हो रहा हां इह तुहानूं आटो होम कमर्शियल बिजनेस इंश्योरेंस दी बेस्ट डील लैके देणगे इह तुहानूं अप टू 35% डिस्काउंट लैके देणगे जेकर तुसी प्रोफेशनल लोक हो जिवें इंजीनियर टीचर नर्सिस डॉक्टर आदि तां होर भी डिस्काउंट मिलेगा लंबे समय तो मनु शर्मा होरी कम्युनिटी दे विच आटो होम कमर्शियल दे बिजनेस इंश्योरेंस कर रहे ने अज ही इन्हां नूं कॉल कर लो 289